0: गुड मॉर्निंग छत्रपती संभाजीनगर. एक्झॅक्टली 7:12 वेळ झाली आणि कस का एकदम मस्त मज्जेत फर्स्ट क्लास तुम्ही असालच असालच पाहिजे यार. कारण की सध्या गणेश उत्सव सुरू आहे और गणपती बाप्पा अगर हमारे साथ हो तो हर एक दिन हमारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से गुजरने ही वाला है. तो इसी पॉजिटिविटी के साथ और एकदम मस्त मौला माहौल के साथ आज के शो का आगाज करते हैं. बाय द वे आज आहे बुधवार आणि बुधवार म्हणजे मिडल ऑफ द वीक असतो आणि कसं आहे ना आता सध्या पूर्ण सण उत्सव सुरू आहे यामुळे ऑफिसला कामावर जायला कॉलेजला जायला काही बोर वगैरे होत नाही आहे क्योंकि मूड ऑलरेडी एकदम फ्रेश होता है बस गणपती बाप्पा का नाम लेने का और दिन का आगाज करने का. बाकी तो आज के शो में बहुत सारी बातें होगी मुलाकातें होगी. फिलहाल तो आप अपनी नींद को बाजू में कर कर उठ जाइएगा और आज की मॉर्निंग को गुड कीजिएगा मेरे यानी कि आरजे अदनान के साथ. बातों का सिलसिला अभी तो शुरू हुआ है बहुत कुछ होगा आज के शो में. उसके पहले बेहतरीन सा गाना अभी आपके कानों पर आने वाला है. थोड़ा बड़ा पुनः एक बार भेंट हुआ तो बड़े एंजॉय करा हाँ सुपर डुपर हिट सॉन्ग ओनली ऑन MGM 90.8 FM. गुड मॉर्निंग छत्रपति संभाजीनगर.
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM.

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आय हाय, किशोर कुमार जी की आवाज में एक बेहतरीन गाने की फरमाइश की आशीष ने, मेरी भीगी भीगी सी, बहुत ही बेहतरीन गाना है यार। सो चलिए अब आशीष भाई की फरमाइश पर ये गाना प्ले करते हैं। एंड बाय द वे, अगर आपकी भी कुछ फरमाइश हो तो हमें व्हाट्सएप कीजिए 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। सो जल्दी करें, फरमाइश आपकी यहाँ पर पूरी होती है, याद रखे और सुनते रहे।

0: What's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761200.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर।

0: फार्मसीमध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
2: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू.
3: ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा.
4: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in.
5: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए.
6: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
5: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
6: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर.

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
2: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

तो बात कुछ ऐसी है कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड से पता है आपको? कुछ ऑफर रही किसी कंपनी की, तो एक सिम कार्ड खरीदते थे, 2-4 महीने यूज करते बाद में उसे फेंक देते और वो डीएक्टिवेट हो जाता। या मम्मी के लिए, बहन के लिए, पापा के लिए, दादा के लिए कोई सिम कार्ड चाहिए तो हम अपने नाम पर ही वो सिम कार्ड खरीदते हैं, तो बस आपको 9 सिम कार्ड ही यूज करने की परमिशन है, उससे ज्यादा सिम आप यूज नहीं कर सकते। और अगर आपके नाम पर कितने सिम कार्ड से ये आपको चेक करना है तो सिंपल तरीके से आप ये चेक कर सकते हो। बस गूगल ओपन कीजिए, टैफकॉप संचार साथी वेबसाइट है उसको ओपन करो, TAFCOP संचार साथी, ये इसकी स्पेलिंग है, मतलब नाम है, तो इसको ओपन कीजिए। उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालिए और एक OTP आएगा, तो OTP से उसको लॉगिन कीजिएगा। आपका मोबाइल नंबर और आपके मोबाइल नंबर के ऊपर कितने सिम कार्ड से उसकी पूरी डिटेल आपको सामने नजर आएगी। सो सिंपल है, टैफकॉप TAFCOP संचार साथी इस वेबसाइट पर जाइए और चेक कीजिए जनाब आज के आज ही, और जो सिम कार्ड आप यूज नहीं करते उसको डीएक्टिवेट कीजिए, क्योंकि कौन कब किस तरीके से आपका कार्ड यूज करे कुछ गलत काम के लिए पता नहीं चलता, फिर फंस आप जाओगे। सो बी सेफ एंड बी केयरफुल एंड स्टे ट्यून्ड।

0: भगवान ने तो हैवान कर दिया भाई अक्षय कुमार और सैफ अली खान को। So, बात कुछ ऐसी है कि हैवान 11 सितंबर को रिलीज हुई थी। प्रियदर्शन की ये फिल्म थी, इसमें अक्षय और सैफ अली खान की जोड़ी हमें नजर आ रही थी। और बात करें तो भाई ये फिल्म कब आई और कैसी जा रही किसी को पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि इसने ना ऑडियंस को अट्रैक्ट किया ना पैसों को अट्रैक्ट किया और कहानी भी ठीक ठाक लग रही थी। और इस फिल्म का नुकसान इसलिए हुआ ताकि इसके सामने खड़ी थी मिर्ज़ापुर द मूवी, तो ऑडियंस के पास दो ऑप्शन थे, हैवान देखे या फिर मिर्ज़ापुर देखे, क्योंकि मिर्ज़ापुर का फैन बेस ऑलरेडी बहुत बड़ा था, तो लोगों ने हैवान को फिलहाल साइड में किया था और मिर्ज़ापुर देखने के लिए गए, तो हैवान थोड़ा बॉक्स ऑफिस पर बहुत जोर से पटक गई है। और बात करते हैं हनुमान अंश की, बॉक्स ऑफिस पर सरप्राइज ये फिल्म आ गई है। फिल्म जब रिलीज हुई थी तो बहुत स्लो इसने स्टार्ट किया था, फिर बाद में एक वीक के बाद इसकी ऐसी पब्लिसिटी हुई कि तकरीबन अब 300 करोड़ तक इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है और ये फिल्म बस बनी है 3 से 4 करोड़ में, तो एक अच्छी कहानी वाली फिल्म भी चल सकती है। सो फिलहाल बॉलीवुड अपडेट में ये दो फिल्मों की चर्चाएं हर जगह है, मिर्ज़ापुर द मूवी एंड हनुमान अंश। बाकी बेचारी हैवान जैसे तैसे सफर कर रही है, कब तक करेगी पता नहीं। आपने देखी है ना ये फिल्म, बताइए जरा डीएम की जगह इंस्टा पर आरजे अदनान इस इंस्टा पेज पर, एंड स्टे ट्यून्ड।
1: ओनली ऑन MGM 90.4।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको एंड 5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात है।

0: सिर्फ फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है NGM 90.8 FM।
1: साथ है तो बात है।

0: नमस्कार, छत्रपती संभाजी नगर.
1: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8 FM.
2: हेलो एवरीवन, कुक एंड बेक विद राजश्री अग्रवाल. इस शो में मैं राजश्री अग्रवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ. गणपति बप्पा का आगमन जो है वो हो गया है और उन्हें खुश करने के लिए रोज हम अलग अलग तरीके के मोदक जो है हम उनके लिए बनाते हैं. सो सभी लोग अलग अलग डिफरेंट तरीके के मोदक जो है वो बना रहे होंगे, लेकिन आज हम थोड़े से जो सबको पसंद आते हैं ऐसे मोदक की रेसिपी देखने वाले हैं, जो होते हैं उकड़ीचे मोदक. सभी लोग ट्राई करते हैं, पर होता है कि कभी न कभी कहीं ना कहीं थोड़े से मिस्टेक आपसे हो जाती है और जिस तरह से हमें वो मोदक चाहिए उस तरह से वो नहीं बन पाते हैं. जो लोग बनाते हैं बहुत बढ़िया, जिन लोगों को प्रॉब्लम आती है वो लोगों के लिए ये रेसिपी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है. सो आज हम देखेंगे कि उकड़ीचे मोदक जो है वो कैसे बनाना है. तो देखो, कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी होती है जब आप उकड़ीचे मोदक बनाते हो, ठीक है. तो बेसिकली इसमें चावल का आटा यूज होता है जब आप उकड़ीचे मोदक बनाते हो, ठीक है. सो चावल का आटा आप लोगे तो चावल आपको याद से कौन से लेने हैं, आपको लेना है या तो आंबे मोहर चावल जो आते हैं वो आपको लेने हैं, या तो इंद्रायणी चावल जो आता है वो भी आप ले सकते हो, या तो फिर बासमती टुकड़ा जो होता है वो भी चावल आप ले सकते हो. तो चावल का आटा जो है आप इसको बाहर से भी पिसा के ला सकते हो या तो घर पर भी बना सकते हो, ठीक है. तो अगर इस तरह से आप चावल का आटा लोगे ना, तो ये चावल के आटे से आपके मोदक जो है ये बहुत ही अच्छे सॉफ्ट जिस तरीके से हमें प्रॉपर चाहिए उस तरीके से ये बन जाते हैं. सो देखो, मेजरमेंट जो है वो आपको प्रॉपरली मेजर करके ही लेना है. जितना मेजरमेंट आपका एक्यूरेट रहेगा रेसिपी भी उतनी ही एक्यूरेट बनेगी आपकी, ओके. सो एक कप अगर आप पानी लेते हो तो एक कप ही आपको चावल का आटा लेना होता है, ओके. सो चावल

0: का आटा जो हमने पहले बताया कि किस तरीके का आपको चावल का आटा लगेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास मेजरिंग कप्स नहीं है तो घर में कोई से भी कटोरी होगी या कुछ भी होगा उससे भी आप ले सकते हो। बस जितना पानी लिया है उतने ही आपको राइस फ्लावर लेना है, चावल का आटा लेना है। ओके, फिर आप किसी से भी मेजर कर लो। तो देखो, सबसे पहले एक पैन लेना है, इसको गैस पे रखना है, उसके अंदर आपको पानी जो है वो डाल देना है, एक कप पूरा, ठीक है। अब पानी जैसे ही गर्म हो जाता है सो आपको एक काम करना है कि आपको इसके अंदर डालना है 1 चम्मच घी। ओके, 1 टीस्पून आप डालोगे इसमें घी। घी डालने से होता क्या है ना कि हमारा जो डो है वो एकदम सॉफ्ट बनता है। तो डो अगर आपका सॉफ्ट बनता है तो जितना पतला ऊपर का कवरिंग आपको चाहिए उतना पतला आप इसे कर सकते हो। और होता क्या है ना कि जब आप इसे मोल्ड करते हो तो मोदक बहुत अच्छे से मोल्ड होता है, और ठीक है। सो घी जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पानी में डालना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद में आपने इसमें राइस का आटा जो है वो डालना है। लेकिन होता क्या है, अगर आप गर्म पानी में राइस का आटा डालोगे तो इसमें गुठलियां बनने लगती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है ना, पानी जैसे उबल गया घी आपने डाल दिया, ठीक है। अभी गैस की फ्लेम को आप लो पे कर दोगे और थोड़ा थोड़ा आटा इसमें आप डालते जाओगे और विस्क का यूज करोगे। विस्क सबको पता है, जिससे गुठलियां नहीं बनेगी। अगर आप इसमें विस्क का यूज करते हो तो आपके आटे में बिल्कुल भी गुठलियां जो है वो नहीं बनेगी। विस्क का यूज करते करते कंटिन्यूस आपको इसको चलाते रहना है और थोड़ा थोड़ा करके पूरा आटा आपको इसके अंदर डाल देना है। सिर्फ एक साथ पूरा आटा डालने की कोशिश मत करो, इससे हो सकता है कि आपकी गुठलियां जल्दी से फॉर्म हो जाती है, ठीक है। सो आपने पहले पानी ले लिया, उसके अंदर आपने घी डाल दिया, ठीक है। घी डालने के बाद में हमने इसमें आटा डाल दिया है। अब आटे का मिश्रण जो है ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, ठीक है। अभी इसके बाद आपको क्या करना है, इसको बहुत से लोग है कि इतना हो जाता है गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। तो देखो, अभी आपको गैस की फ्लेम को ऑफ नहीं करना है, आपको इसको ढककर 1 से 2 मिनट तक होने देना है। इससे होगा क्या ना कि हमारा जो आटा है इसमें का कच्चापन जो है ये पूरी तरह से निकल जाएगा, अगर आप इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से भाप पे होने देते हो तो, ठीक है। अगर आपने ये स्किप कर दिया, तुरंत से गैस की फ्लेम को ऑफ कर दी, तो आपके मोदक में कहीं ना कहीं वो कच्चापन जो होता है वो लगेगा। सो आटे में कच्चापन जो है ये नहीं लगना चाहिए। सो इसके लिए आपको आटे को जो है ये ढककर होने देना है, ठीक है। गैस की फ्लेम मेक श्योर कि सबसे लोवेस्ट पे हो, हाईएस्ट पे ना हो या मीडियम पे भी ना हो। 2 मिनट के बाद में आपको गैस की फ्लेम जो है ये बंद कर देनी है, ओके। और आटा जो है ये किसी भी मिश्रण जो है हमारा ये किसी भी प्लेट में या थाली में आप निकाल लोगे। अभी हम क्या करते हैं ना कि इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, गुनगुना होने देते हैं कि फिर हम इसको मलेंगे कि हमें हाथों को गर्म ना लगे, है ना। लेकिन टिप यही है कि आपको इसको गर्म ही मलना है। अभी आपके हाथ को चटका बैठेगा तो हाथ से बिल्कुल नहीं मल है, या तो आप मैशर का यूज कर सकते हो या तो आप कोई ऐसे मोटे बेस का अगर ग्लास है आपके पास में प्लेन सरफेस हो उससे भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप इसको अच्छे से मिक्स करोगे ना मलते हुए तो इसमें एकदम सॉफ्टनेस आएगी, और फिर इससे आप जब कवरिंग करोगे तो बहुत अच्छे से वो कटोरी जो है वो बनेगी फिलिंग भरने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप करते हो तो बहुत अच्छा डिजायर जो हमें चाहिए उस तरह का डो जो है वो आपका बनने वाला है। तो 5 से 6 मिनट आपको इसको अच्छे से मल लेना है। अभी मलने के बाद होता क्या है ना कि हम इसको ऐसे खुला छोड़ देते हैं। सो आपको इसको खुला नहीं छोड़ना है, आपको इसको किसी भी एक बाउल में लेना है। बाउल में थोड़ा सा घी अप्लाई करोगे ताकि बाउल को भी ये आटा जो है वो चिपके ना, उसके बाद में हमने जो ये आटा गूंदा है ये आपको उसके अंदर रख देना है, लेकिन बाउल को आपको खुला नहीं छोड़ना है, आपको इसको सूती या मलमल कपड़े से आपको इसको ढक के रखना है, ठीक है। अगर आप इसे ऐसे ही खुला छोड़ दोगे ना तो ऊपर का जो लेयर है ना वो हार्ड होगा और वो हार्डनेस जो है इससे मोदक जो है जब बनाते हो सो वो कट सकते हैं। सो इसके लिए आपको आटे को याद से ढक के रखना है, ठीक है। देखो अच्छे से गूंद लिया आपने और इसको ढककर रख दिया। अगर आपका फिलिंग बनाना बाकी है सो आप ऐसे कि ऐसे पूरा डो आप ढककर रख सकते हो, और अगर आपका फिलिंग रेडी है सो आप क्या कर सकते हो ना, तुरंत से इसके गोले बना सकते हो फिलिंग भरने के लिए, ठीक है। जब भी अगर आपने इसको खुला छोड़ा ना हवा में तो इसके ऊपर एक ऐसे हार्डनेस आ जाती है और जिसके कारण आपके मोदक जो है ये कटते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने पूरा डो जो है ये अच्छे से गूंद कर ढक कर छोड़ देना है ना, खुला आप इसको नहीं छोड़ोगे। देखो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले हमने मेजरमेंट जो है ये प्रॉपर मेजर करके लेना है, ओके, इक्वल क्वांटिटी में पानी और इक्वल क्वांटिटी में ही आटा, ठीक है। याद से पानी में आपने इसमें घी डालना है ताकि आपका जो आटा है इसके अंदर सॉफ्टनेस आए, ठीक है। उसके बाद में विस्क का यूज आपने याद से करना है ताकि इसमें गुठलियां जो है वो ना बने, लम्स फ्री बने, ठीक है। विस्क का अगर आप यूज करते हो तो बिल्कुल भी लम्स फॉर्म नहीं होते हैं उसमें और बहुत अच्छे से आपका मिश्रण जो है वो मिक्स होता है। उसके बाद में लास्ट में जब हम मिक्स पूरा मिश्रण जो है ये मिक्स कर देते हैं उसके बाद में याद से इसको 2 मिनट के लिए आपको ढककर रखना है ताकि इसका कच्चापन जो है ये पूरी तरह से निकल जाए। और होगा क्या ना कि अगर वो 2 मिनट कुक करते हो ना इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और आटा भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो इससे होता क्या है ना कि आटे में का कच्चापन जो है ये पूरी तरह से निकल जाता है और ये टेस्ट भी बहुत अच्छा देता है। सो ये कुछ चीजें हैं जो आपने हम ऊपर का कवरिंग जब बना रहे हैं, ऊपर का डो जब बना रहे हैं वो आपने फॉलो करना है। सो इससे आपका जो रिंग है बहुत ही अच्छा बनेगा, इवन जब आप मोदक बना रहे हो तो वो कटेंगे भी नहीं और जो ड्राइनेस आती है ऐसे खुला खुला आपका आटा होता है वो सब चीजें जो है वो अवॉइड हो जाएंगी, ओके। जिस तरीके से आप बनाते हो बस उसी तरीके से है, बस थोड़ी सी 2-3 चीजों का बस आपको ख्याल रखना है। इतनी भी चीजें आपने फॉलो करी तो आपको प्रॉपर से कवरिंग जो है वो जम जाएगा। अभी हमारा कवरिंग जो है ये रेडी है, ये हमने ढककर छोड़ दिया है, ठीक है। इसके बाद में हम इसकी करने वाले हैं फिलिंग। सो फिलिंग बनाने के लिए क्या प्रोसीजर है वो अभी हम देखते हैं। अभी देखो फिलिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पे गीला नारियल लेना है, जो बंद वाला अखा नारियल जो आता है, ठीक है। नारियल लिया आपने, इसे फोड़ लेना है अच्छे से और जो इसके अंदर का नारियल होता है वो आप एज इट इज वैसे के वैसे ही यूज कर सकते हो। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं कि जैसे व्हाइट वाला पोर्शन अंदर की साइड होता है और ऊपर से एक ब्राउन कलर का उसके ऊपर कवर होता है, सो वो ब्राउन वाला जो ये है वो आप पीलर से छील कर हटा सकते हो अगर आपको वो नहीं चाहिए तो। लेकिन टेस्ट अच्छा आता है तो मैं अवॉइड करती हूँ वो निकालना, मैं ब्राउन पार्ट भी रहने देती हूँ, उसी के ही साथ में मैं नारियल जो है वो ग्रेट करती हूँ। अगर आपको इन केस नहीं चाहिए तो आप पीलर से उसको हटा सकते हो, ठीक है। जिस तरह से हम छिलके हटाते हैं तो वैसे आपने नारियल के ऊपर वाला जो ब्राउन पार्ट होता है वो आपने हटा लेना है। अब जैसे ही आपने वो पार्ट हटा लिया नारियल को आपको अच्छे से ग्रेट कर लेना है ग्रेटर से, ओके। ग्रेट इसलिए करना है कि मिश्रण जो है ना ये बाद में आसानी से मिलकर आ जाता है, सो इसके लिए नारियल को कभी भी ग्रेट करना है। अभी ग्रेटर आपको जो स्मॉल साइज वाला होता है वो यूज करना है। अगर आप मोटा मोटा इसको ग्रेट करोगे या बड़े साइज का ग्रेटर अगर आप यूज करोगे सो नारियल बड़ा बड़ा ग्रेट होगा और जब आप फिलिंग भरोगे तो हो सकता है आपके मोदक जो है वो कट सकते हैं। सो ग्रेटर जो है ये आपको छोटा वाला ही यूज यूज़ करना है, ठीक है। उससे आपने पूरा नारियल जो है वो ग्रेट कर लेना है, ओके। अभी ग्रेट करने के बाद मान के चलो किसी भी कटोरी या बाउल में या मेजरिंग कप में आपने ये ग्रेट किया हुआ नारियल डालना है और मेजर करना है। जैसे आपने एक कप ले लिया तो एक 1 फुल कप भरकर अगर आपका ग्रेटेड नारियल है जो आपने अभी कसा नारियल, वो कसा हुआ नारियल अगर आपका एक कप भर रहा है सो उसको मेजरमेंट जो रहेगा गुड़ का वो रहेगा 3/4 कप यानी कि 1 पाउंड कप अगर एक कप आपका ग्रेटेड नारियल। सो देखो बहुत से लोगों का प्रॉब्लम यही पे होता है कि नारियल और गुड़ का मेजर कैसे लेना है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि नारियल देखा बिना ग्रेट किए ही उसका मेजरमेंट कर लिया और उसी हिसाब से उसमें गुड़ डाल दिया, तो गुड़ का मेजरमेंट अगर कम ज़्यादा हो जाता है तो एक तो मिश्रण आपका बहुत पतला हो जाता है या तो फिर बहुत ड्राई हो जाता है। सो इसके लिए गुड़ और नारियल का मेजरमेंट भी बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, सो इससे आपका फिलिंग जो है वो प्रॉपर बनेगा, ठीक है। अब अगर आपका कसा हुआ नारियल जो है वो 1 कप भरता है ग्रेट करने के बाद में तो 3/4 कप उसी कप से आपने लेना है गुड़, ग्रेट करके भी ले सकते हो या तो उसको थोड़ा सा कूट कर आप बारीक कर कर भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन 1 पाउंड कप ही आपको लेना है यानी कि 3/4, ओके। अभी नारियल जो है वो हमने मेजर कर लिया, उसके बाद में गुड़ जो है ये भी हमने मेजर करके निकाल लिया। अगर आपके पास कप नहीं है तो किसी भी बड़ी सी कटोरी में डालकर भी आप मेजरमेंट जो है वो कर सकते हो, लेकिन सिर्फ याद रहे कि जिस कटोरी से नहीं है तो किसी भी बड़ी सी कटोरी में डालकर भी आप मेजरमेंट जो है वो कर सकते हो, लेकिन सिर्फ याद रहे कि जिस कटोरी से आपने नारियल मेजर किया उसी कटोरी से आपने गुड़ भी मेजर करना है, ओके। इसके बाद में हमने एक पैन रखना है, पैन को थोड़ा सा हीट करना है और 1 टेबलस्पून डाल देना है उसके अंदर देसी घी, ओके। इसके अंदर अब हमने जो ग्रेट किया हुआ नारियल है इसको डाल देना है और कम आंच पर ही आपको इसे भूनना है। इसको तब तक भूनना है कि नारियल का कच्चापन जो है ना वो हटता है धीरे धीरे धीरे धीरे। सो सबसे लोवेस्ट फ्लेम पे है ना, फुल फ्लेम नहीं रखोगे, फुल फ्लेम पे रखोगे तो नारियल हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा जला जला सा स्मेल उसमें आएगा और वो टेस्ट आपके मोदक में आ सकता है। सो कभी भी नारियल को जो है ये फुल फ्लेम पे नहीं भूनना है, घी डालकर ही भूनना है और सेकेंड थिंग की आपको इसको गैस की फ्लेम सबसे लोवेस्ट पे ही रखना है और फिर ही आपको इसको भूनना है। इसके बाद में इसको 4 से 5 मिनट लग सकते हैं भूनने के लिए। भूनना जैसे ही हो जाता है नारियल, इसके बाद में ही आपने इसके अंदर गुड़ ऐड कर देना है, ठीक है। अभी गुड़ ऐड कर दिया तो सबसे पहले जैसे आप इसको मिक्स करोगे धीरे धीरे तो गुड़ की कंसिस्टेंसी जो है ये लूज होती जाएगी, है ना, क्योंकि गुड़ जो है वो गर्म इसमें जाने के बाद मेल्ट होने लगता है। अभी वो जब मेल्ट हो रहा है तो आपका मिश्रण भी जो है वो पतला होने लगेगा, है ना, लूज कंसिस्टेंसी में आने लगेगा। तो मिश्रण जो है इसको लूज कंसिस्टेंसी में आने दो और इसके बाद में लोवेस्ट टू मीडियम, मतलब बीच बीच में लोवेस्ट पे गैस रखना है और बीच बीच में आपको मीडियम पे लेके जाना है। तो इस तरह से करते हुए मिश्रण को हमें थिक करना है। तो इसको टाइम लगेगा क्योंकि पहले हमने गुड़ डाला, उसके बाद में मिश्रण जो है ये लूज कंसिस्टेंसी में आने लगेगा। लूज कंसिस्टेंसी में पूरा आ जाने के बाद फिर धीरे धीरे धीरे मिश्रण जो है ये थिक होता है। सो उस समय हमको गैस की फ्लेम मीडियम टू लो पे रखनी है, ओके। बीच बीच में मीडियम पे करोगे और बीच बीच में लोवेस्ट पे करोगे। सो मिश्रण थिक होना शुरू हो जाएगा और मिश्रण में जब पूरा थिकनेस आ जाएगा, जब आपको लग रहा है कि अब मिश्रण जो है ये गाढ़ा हो चुका है, देखो मिश्रण गाढ़ा कितना होना चाहिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका मिश्रण लूज कंसिस्टेंसी में ही रहता है, पतला ही अगर रहता है तो आप इसको फील कर नहीं पाओगे मोदक के अंदर, ठीक है। लूज कंसिस्टेंसी का मिश्रण उसके लिए नहीं चलेगा। सो मिश्रण जो है थोड़ा सा थिक ही होना चाहिए, तो उतना आपने इसको थिक होने देना है, ठीक है। अभी जैसे ही मिश्रण आपका थिक होने लगता है इसके अंदर आपको डालना है भुनी हुई खसखस, ठीक है, पॉपी सीड्स।
1: खसखस को पहले ही आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है और इसके अंदर बाद में ऐड कर देना है, है ना। अभी अगर आप गीले मिश्रण में कच्ची खसखस अगर ऐड करते हो सो वो अच्छे से भूनी नहीं जाएगी। जब पैन आपका ड्राई था तभी आपने इसे भून कर और निकाल लेना है। खसखस आप 1 से 1.5 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। ज्यादा पसंद करते हो तो 2 टेबल स्पून भी आप इसमें खसखस जो है वो डाल सकते हो, अच्छी ही लगती है। ओके, सो खसखस हमने इसमें डाल दी। अभी इसके बाद में इसमें

जाएंगे सारे ड्राई फ्रूट्स आपके पसंदीदा, एक से दो टेबलस्पून डालना है, जिसमें आप बादाम ले सकते हो, कैशू नट्स ले सकते हो, है ना। अगर अखरोट पसंद करते हो तो वो भी डाल सकते हो, पिस्ता डाल सकते हो, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है वो सारे ड्राई फ्रूट्स आप इसमें थोड़े से दरदरे पीस कर डाल दीजिए। ओके, अभी यहाँ पे भी एक चीज है कि जो लोग पहले से बनाते हैं वो लोग इस तरह से दरदरे पीसे अगर डालते हैं ड्राई फ्रूट्स तो उनको जम जाएंगे, मोदक उनको बनाने आ जाएंगे। ओके, लेकिन जो बिगिनर है, जो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए ये टिप है कि उन्होंने ड्राई फ्रूट्स जो है ये दरदरे पीसे हुए नहीं डालना है, ड्राई फ्रूट का पाउडर आपने ऐड करना है। मतलब जब आप मोदक बनाओगे ना फिलिंग भरकर, सो आपका मिश्रण जो है वो बाहर नहीं आएगा। नहीं तो क्या होता है ना कि ड्राई फ्रूट्स के जो पीसेस होते हैं ये नोकदार होते हैं, सो वो लगकर और आपका मोदक जो है इसमें कटा सकता है। ठीक है, सो जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं उन्होंने इसके अंदर ड्राई फ्रूट का पाउडर ऐड करना है और मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर देना है। ठीक है, जैसे हमने पहले नारियल भून लिया, उसके अंदर गुड़ डाला है ना, गुड़ को पहले लूज कंसिस्टेंसी आई, उसके बाद में मिश्रण थिक होने लगा। जैसे ही मिश्रण पूरा थिक फॉर्म में आ गया, उसके अंदर हमने डाल दी भुनी हुई खसखस और डाल दिया हमने इसके अंदर ड्राई फ्रूट का पाउडर। और जो लोगों को जम जाता है, जो लोग बनाते हैं वो लोग इसमें ड्राई फ्रूट के टुकड़े भी डाल सकते हैं। ठीक है, इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है पैन में और अब आपको गैस की फ्लेम जो है वो ऑफ कर देना है। देखो, गैस की फ्लेम हाई क्यों नहीं रखना है ना, कभी कभी गुड़ डालने के बाद वो कैरामलाइज्ड हो जाता है इसके अंदर, सो इससे क्या होता है ना उसमें हार्डनेस आ जाती है। सो इसके लिए याद रहे कि थोड़ा सा हम क्या करते हैं ना, आलस करते हैं, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में हम क्या करते हैं, गैस की फ्लेम को हाई पे रख देते हैं। सो गैस की फ्लेम कभी भी आपको फीलिंग बनाते समय हाई पे नहीं रखनी है, आपको सबसे लोवेस्ट पे ही गैस की फ्लेम जो है वो रखनी है, ताकि आपका गुड़ जो है वो कैरामलाइज्ड ना बने। ठीक है, तो इस तरह से फीलिंग जो है ये भी हमने रेडी कर ली है। तो देखो, कवरिंग जो है इसका डो जो बनाना था वो हमने सबसे पहले रेडी कर लिया। ओके, उसके बाद में हमने फिलिंग भी बनाई और वो भी रेडी करके रख दी। अभी देखो, डो जो बना था उसको ढक के रखना है याद से, उसको खुला नहीं छोड़ना है। या तो आप और एक चीज कर सकते हो कि पहले फिलिंग बना लो। ओके, तो फिलिंग तब तक ठंडा भी हो जाएगा, उसके बाद में आटा बनाओ आप। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हो, और नहीं तो जैसे हमने बनाया वैसे भी आप कर सकते हो, बस उसको खुला नहीं छोड़ना है हवा में, आपको उसे ढककर रखना है। ठीक है, उसके बाद में हमने बनाई फीलिंग। अभी फीलिंग कभी भी गरम गरम नहीं भरा जाता है। ओके, सो फीलिंग जो बनाना है उसके बाद में उसको एक प्लेट में खुला करके ठंडा होने देना है, क्योंकि फीलिंग ठंडा होना बहुत जरूरी है। फीलिंग अगर ठंडा नहीं होता है सो वो प्रॉपर से मोदक में भरा नहीं जाएगा, है ना। सो फीलिंग ठंडा होना बहुत जरूरी है, और अगर आप गर्म भरते भी हो ना तो आपके मोदक में से वो फीलिंग जो है वो टूट कर बाहर आएगी। सो दोनों भी चीजें आपको प्रॉपर से करना है कि डो जो बना है आटे का उसको ढक के रखोगे, और फीलिंग जो है इसको पूरी तरह से ठंडा करना है, बिल्कुल भी गुनगुना भी फीलिंग आपका नहीं रहना चाहिए। सो दोनों चीजें हमने रेडी कर ली है। अब इसके बाद में जो डो बनाया है इसके छोटे छोटे गोले बनाने हैं। ओके, गोले बनाने के बाद में हाथ में लेकर आपको इसकी एक छोटी सी कटोरी बना लेनी है, जिस तरह से देखो हम पूरन पोली बनाते हैं ना, सेम वैसी छोटी सी कटोरी बनानी है। अभी पूरन पोली के लिए हम बड़ी कटोरी बनाते हैं, मोदक के लिए हम थोड़ी सी छोटी कटोरी बनाएंगे। अभी डिपेंड करता है कि आपको मोदक कितना बड़ा चाहिए। अगर आपको मोदक बहुत बड़ा बनाना है, क्योंकि बड़े भी मोदक मिलते हैं मार्केट में, है ना,
सो अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप पूरन पोली जितना भी बड़ा बना सकते हो, जितना पूरन पोली का गोला बना लेते हैं हम, उतने बड़े आटे में लेके भी आप फिलिंग भर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका मोदक किस साइज का है, ठीक है। सो कटोरी हमने बना ली, अभी क्या करना है आपको, जो फिलिंग हमने बनाई है उसको आपको हाथ से ऐसे लड्डू बनाना है थोड़ा सा उसका, और ऊपर से एक छोटा सा पिक निकालना है मोदक।

की तरह, और वो आपकी कटोरी में रख देना है। अभी देखो, जिनको कली बनाना आती है मोदक के बाहर से तो वो लोग कली बनाए, और जिनको नहीं आती है वो लोग आजकल बाजार में बहुत अच्छे मोदक के मोल्ड्स मिलते हैं, तो आप वो भी यूज कर सकते हो कि पहले आपने उसमें मोल्ड्स में थोड़ा सा घी अप्लाई करना है, फिर आपने जो हमारा ये डो है ये आपने उसके अंदर लगा देना है, ठीक है। और बीच में जो है वो हमारा जो फिलिंग है वो अपने स्टफिंग भर देना है, और फिर इसको पैक करके अपने मोदक को निकाल लेना है। सो देखो, जिनको मोल्ड में बनाना है वो इस तरह से बनाएंगे, और जिनको हाथ से अभी कली बनाना है सो पहले कटोरी बना ली आपने, फिर इसकी कलियां बना ली आपने। कली प्रॉपर से आती हो तो ही बनाइए, तो ही वो अच्छी दिखती है, अदरवाइज वो अच्छी नहीं दिखती है। फिर उससे बेटर है तो आप मोल्ड से बना लीजिए, ठीक है। कलियां बना ली आपने, अब वो जो हमने फीलिंग का मोदक बनाया था वो आपको सेंटर में रखना है, और फिर आपकी कटोरी की सारी कलियां पकड़ते हुए आपने इनको ऊपर लाना है और पैक करना है मोदक की साइज में, ठीक है। ऊपर अपर साइड ही आप इसको लॉक करोगे, ठीक है। एक्स्ट्रा अगर आटा आता है ऊपर तो आपको उसको निकाल लेना है, और हल्के हल्के हाथों से पूरे मोदक को प्रेस करना है ताकि सब जगह से वो पैक हो जाए, कहीं से भी आपकी फिलिंग बाहर आने के लिए जगह ना बचे, ठीक है। तो इस तरह से ही सारे मोदक जो है ये आपको बनाकर रेडी कर लेने हैं, जितने भी आपने लिए है, आटा बनाया है और फिलिंग रेडी करी है, ठीक है। 11 मोदक बना सकते हो, 21 मोदक बना सकते हो, इस तरह से। सो और एक चीज बता दियो कि आपको अगर 11 ही मोदक बनाना है तो जब हमने डो बना लिया ना उसी समय उसके 11 गोले बना के रख दो, मतलब 11 मोदक आपके प्रॉपर से बन जाएंगे, है ना। अगर आपने अंदाजे से लेने शुरू कर दिए तो हो सकता है कहीं 9 पे खत्म हो गए, हो सकता है ज्यादा बन गए उससे, 13-14 बन गए। सो जब हमने आटा लगाया उसी समय उसके गोले बना लो कि हमें 11 मोदक बनाना है, तो 11 गोले हमने बना लिए। फिलिंग को भी ऐसे ही करना है, इक्वल पार्ट्स में 11 साइड में डिस्ट्रीब्यूट करोगे और 11 इसके मोदक आप बना के साइड में रख दोगे, तो फिर आपको इसके मोदक बनाने भी आसान जाएंगे, और 11 मोदक, 21 मोदक जितने भी आपको चाहिए उतने एक्यूरेट बन जाएंगे वो, ठीक है। तो देखो, सारे मोदक ऐसे हमने रेडी कर लेने हैं। देखो, सबसे पहले कवरिंग बना लिया, फिर उसके बाद में फिलिंग बनाई, फिर दोनों का मिलाकर हमने अभी यहाँ पे मोदक जो है वो रेडी कर दिया है। अब ये मोदक को ऐसे ही नहीं खाया जाता है, इसको आपको भाप पे होने देना है एक 10 से 12 मिनट के लिए, ठीक है। सो इसको भाप पे पकाने के लिए आप स्टीमर का यूज कर सकते हो। अगर आपके पास में इडली का स्टीमर है ना, इडली पॉट जो होता है उसके अंदर आप इसे स्टीम दे सकते हो, नहीं तो सिंपली घर पे हमारे स्टील की चलनी होती है ना, तो जिसको जाली होती है, हल्के हल्के छेद होते हैं उसमें, सो उस तरह की चलनी भी आप यूज कर सकते हो। अब जब आपने स्टीमर लिया, स्टीमर की प्लेट रखी जिसपे हल्के छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसके ऊपर आपने रखना है अभी केले का पत्ता। इससे क्या होगा ना, वो केले का पत्ते का बहुत ही सुंदर ऐसा अरोमा उसके अंदर आता है आपकी मोदक में। सो अगर केले का पत्ता इजीली अवेलेबल हो रहा है कहीं से, तो आप केले के पत्तों पर ही ये मोदक को भाप पे दहोने दोगे। अगर आपके पास केले का पत्ता नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सूती मलमल का कपड़ा भी इसके ऊपर रख सकते हो, कोई भी सूती कपड़ा रख दो या मलमल का कपड़ा रख दो, तो वो भी आप इसके ऊपर रखकर उसको थोड़ा सा गीला करके रखिए, और फिर उसके ऊपर आपने ये मोदक जो है ये रख देने हैं, ठीक है। सो देखो, आपने स्टीमर रखा है ना, उसके अंदर पानी डाल दिया, उसके ऊपर जाली या जो भी प्लेट है उसकी स्टीमर की वो रख दिया आपने, उसके ऊपर आपने केले का पत्ता रख दिया। अभी उसके ऊपर हमने ये जो मोदक बना के रखे हैं ये आपको रख देने हैं, ठीक है। रखने के बाद में आपको ऊपर की लिड लगानी है और एक 10 से 12 मिनट इसको भाप पे होने देना है अच्छे से, ठीक है। एक 10 से 12 मिनट के बाद में आप लिड निकाल लोगे और इन मोदक को आपने एक प्लेट में निकालना है, ठीक है।
प्लेट लोगे उसमें भी आपको केले का पत्ता रखना है और फिर उसके ऊपर आपको ये मोदक जो है ये निकाल लेने हैं। अब मोदक जब गर्म होते हैं तभी आपको इसके ऊपर घी डालना है। अगर मेल्टेड घी डालते हो तो वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। सो याद रहे कि मोदक जब गर्म है तभी आपने इसके ऊपर तुरंत से घी डालना है, ठीक है। घी डालने के बाद में अगर आप इसको थोड़ा सा गार्निश करना चाहते हो तो केसर की डंडिया जो आती है ना, सैफ्रन स्टिक्स, सो ये आपने एक एक हर मोदक पे लगा देनी है। अगर आपको इसका थोड़ा सा डार्क ऑरेंज कलर चाहिए सो आप और एक चीज कर सकते हो कि जब हमने भाप देने से पहले मोदक रखे स्टीमर में तभी आपने इसके ऊपर एक एक केसर की डंडी जो है वो लगा देनी है। सो ये जब भाप पे होगा ना सो इसका डीप कलर उसके अंदर उतरेगा, सो डार्क थोड़ा सा ऑरेंज कलर ऊपर की साइड दिखेगा आपके सैफ्रन स्टिक का। सो जिनको डार्क कलर चाहिए वो इस तरह से नेचुरली डार्क कलर ला सकते हैं, और जिनको बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं चाहिए वो मोदक स्टीम करके निकालने के बाद में भी उसके ऊपर सैफ्रन स्टिक जो है वो लगा सकते हैं। सो एक चीज याद रखना है, जैसे ही मोदक बन जाते हैं तुरंत से आपको बप्पा को भोग लगा देना है, ठीक है। गरम खाओ ना तो इसका कुछ और ही स्वाद आता है, तो बप्पा को भोग लगाओ और घर में भी आप सब इसे एंजॉय कीजिए। सो इस गणपति के त्योहार पर इस तरह के उकड़ीचे मोदक अपने हाथों से बनाकर बप्पा को जरूर दीजिएगा। बप्पा के साथ साथ आपके घर वाले भी बहुत खुश हो जाएंगे। सो ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और आपकी रेसिपी कैसी बन रही है ये हमें जरूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड विद MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है एफजीएम 90.8 एफएम।

टन टन तारा चलते है कानों से पारा टन टन टन टन टन तारा चलते है कानों से पारा खड़ी खड़ी क्या सोच रही है चल

टन टन टन तारा चलती है कानों से पारा, खड़ी खड़ी का सोच रही

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा MGM 94 Native FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए MGM 94 Native FM, साथ है तो बात।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको एंड फाइव, छत्रपति संभाजीनगर।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

बच्चे तो पारा टन टन टन टन टन तारा चलते है कानों से पारा टन टन टन टन टन तारा चलते है कानों से पारा।

इतना टन टन टन तारा चलती है कानों से पारा खड़ी खड़ी।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: विद स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: हैवान ने तो हैवान कर दिया भाई अक्षय कुमार और सैफ अली खान को। So, बात कुछ ऐसी है कि हैवान 11 सितंबर को रिलीज हुई थी। प्रियदर्शन की ये फिल्म थी, इसमें अक्षय और सैफ अली खान की जोड़ी हमें नजर आ रही थी। और बात करें तो भाई ये फिल्म कब आई और कैसी जा रही किसी को पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि इसने ना ऑडियंस को अट्रैक्ट किया ना पैसों को अट्रैक्ट किया और कहानी भी ठीक ठाक लग रही थी। और इस फिल्म का नुकसान इसलिए हुआ ताकि इसके सामने खड़ी थी मिर्ज़ापुर द मूवी, तो ऑडियंस के पास दो ऑप्शन थे, हैवान देखे या फिर मिर्ज़ापुर देखे, क्योंकि मिर्ज़ापुर का फैन बेस ऑलरेडी बहुत बड़ा था, तो लोगों ने हैवान को फिलहाल साइड में किया था और मिर्ज़ापुर देखने के लिए गए, तो हैवान थोड़ा बॉक्स ऑफिस पर बहुत जोर से पटक गई है। और बात करते हैं हनुमान अंश की, बॉक्स ऑफिस पर सरप्राइज ये फिल्म आ गई है। फिल्म जब रिलीज हुई थी तो बहुत स्लो इसने स्टार्ट किया था, फिर बाद में एक वीक के बाद इसकी ऐसी पब्लिसिटी हुई कि तकरीबन अब 300 करोड़ तक इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है और ये फिल्म बस बनी है 3 से 4 करोड़ में, तो एक अच्छी कहानी वाली फिल्म भी चल सकती है। सो फिलहाल बॉलीवुड अपडेट में ये दो फिल्मों की चर्चाएं हर जगह है, मिर्ज़ापुर द मूवी एंड हनुमान अंश। बाकी बेचारी हैवान जैसे तैसे सफर कर रही है, कब तक करेगी पता नहीं। आपने देखी है ना ये फिल्म, बताइए जरा डीएम की जगह इंस्टा पर आरजे अदनान इस इंस्टा पेज पर, एंड स्टे ट्यून
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है FGM 90.8 FM।

बात कुछ ऐसी है कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड से पता है आपको? कुछ ऑफर रही किसी कंपनी की, तो एक सिम कार्ड खरीदते थे, 2-4 महीने यूज करते बाद में उसे फेंक देते और वो डीएक्टिवेट हो जाता। या मम्मी के लिए, बहन के लिए, पापा के लिए, दादा के लिए कोई सिम कार्ड चाहिए तो हम अपने नाम पर ही वो सिम कार्ड खरीदते हैं। तो बस आपको 9 सिम कार्ड ही यूज करने की परमिशन है, उससे ज्यादा सिम आप यूज नहीं कर सकते। और हाँ, अगर आपके नाम पर कितने सिम कार्ड से ये आपको चेक करना है तो सिंपल तरीके से आप ये चेक कर सकते हो। बस गूगल ओपन कीजिए, टैफकॉप संचार साथी वेबसाइट है उसको ओपन करो, TAFCOP संचार साथी, ये इसकी स्पेलिंग है, मतलब नाम है, तो इसको ओपन कीजिए। उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालिए और एक OTP आएगा, तो OTP से उसको लॉग इन कीजिएगा। आपका मोबाइल नंबर और आपके मोबाइल नंबर के ऊपर कितने सिम कार्ड से उसकी पूरी डिटेल आपको सामने नजर आएगी। सो सिंपल है, टैफकॉप TAFCOP संचार साथी इस वेबसाइट पर जाइए और चेक कीजिए जनाब आज के आज ही, और जो सिम कार्ड आप यूज नहीं करते उसको डीएक्टिवेट कीजिए, क्योंकि कौन कब किस तरीके से आपका कार्ड यूज करे कुछ गलत काम के लिए पता नहीं चलता, फिर फंस आप जाओगे। सो बी सेफ एंड बी केयरफुल एंड स्टे ट्यून्ड।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94 एफएम, साथ है तो बात है।

0: यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।